0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें। पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें। NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।
4: आज रविवार युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 27 सितंबर 2026 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। गणेश चतुर्थी पर देश भर में बप्पा की पूजा हुई, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका में मौजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस त्यौहार को खास अंदाज में मनाया। यहाँ वैज्ञानिकों ने बर्फ से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा की और फिर उसी में विसर्जन की रस्म भी निभाई। इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज्जैनी थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान अचानक बम फोड़े जाने के से हड़कंप मच गया। फतेहपुर गांव के पास यात्रा को कथित तौर पर करीब 2 दर्जन लोगों ने घेर लिया। पहले फिर फायरिंग और बमबाजी हुई, जिससे यात्रा में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई। इसके बाद कथित तौर पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर कुछ लोगों ने भक्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। विसर्जन यात्रा में बमबाजी और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस जाँच के आधार पर होगी। माफ कीजिएगा। चुनाव आयोग के अंदरूनी मतभेद को मीडिया में के खुलासे ने उजागर कर दिया, लेकिन आयोग की सफाई ने कई दावों की ओर धार कुंद कर दी। खास तौर पर उन आरोपों की, जब ये कहा जा रहा था कि पूरा चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन इस खुलासे से कई गंभीर सवाल अंतरित छोड़ दिए। जैसे चुनाव आयुक्तों की मर्जी के बिना फैसले हुए तो उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से क्यों नहीं की। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग में अंदरूनी कामकाज पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान देश भर में ड्राफ्ट रोल से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए और इसी अवधि में आयोग के 2 सदस्य सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की। यह आपत्तियां ECI नेट सॉफ्टवेयर के कथित सेंट्रलाइजेशन फॉर्म 6 में बदलाव पर, पश्चिम बंगाल में अपीलों और प्रशासनिक आदेशों जैसे मुद्दों पर थी। रिपोर्ट का मूल मैसेज यह था कि बहुमत वाले आयुक्त कई फैसलों से अनजान रखे गए, जिससे संस्था की प्रकृति और वैधानिक अधिकारों का पर सवाल उठा। सिक्किम में गुरुवार 24 सितंबर की रात को भारी लैंडस्लाइड हो गई। घटना के बाद पहाड़ी का मलबा तेजी से गांव की तरफ बहता हुआ पहुंचा। लैंडस्लाइड की वजह से कई घर टूट गए, जिससे काफी नुकसान हुआ। जानकारी और मुताबिक सिक्किम के रिम्बी गांव में इस लैंडस्लाइड ने बड़ी तबाही मचाई। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के नेता और बीजेपी के खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 10वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। भक्ति संगीत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी दर्शकों के बीच बैठे और कलाकारों के साथ मिलकर राम भजन के गीत गाते दिखे और तालियां बजाई। पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में अपने मन की बात कार्यक्रम में भजन क्लबिंग ट्रेंड के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं में बढ़ती दिलचस्पी आध्यात्मिकता, संस्कृति और आधुनिकता का मिला जुला रूप है। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों के माहौल की तुलना ग्लोबल कॉन्सर्ट से भी की थी। तब से यह ट्रेंड भारत के कई शहरों में होने वाले कार्यक्रम में देखा गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए DADR यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े राष्ट्रीय संगठन ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में त्योहारों से पहले DADR बढ़ोतरी के ऐलान की मांग की गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनके इस पत्र का पर विचार करेगी और दुर्गा पूजा दशहरा से पहले DADR हाइक का ऐलान कर सकती है। भुज भुरानी अमृत भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन 5 राज्यों को जोड़ते हुए 2532 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया। तीनों को सरकारी गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में 133 करोड़ का जिक्र है। 400 पेज के आरोप पत्र और 101 केस डायरी में पर्चे में भी इनमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने भारत से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए पाकिस्तान का पक्ष रखा। उन्होंने मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दोनों परमाणु संपन्न देश बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप से हालात और नहीं बिगड़े। इसके साथ सिंधु जल संधि को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया गया और पाकिस्तान के हिस्से के पानी में किसी भी तरह की बाधा को युद्ध जैसी कार्रवाई बताया गया। अमरीकी कांग्रेस ने 16 सितंबर को लिंसे ओग्राम सैंक्शनिंग रशिया और ईरान एक्ट को 2062 के मुकाबले 149 मतों से पास किया। अमरीकी सेनेट ने इस बिल को भारी बहुमत से 7 अगस्त को पास किया था। अब ट्रंप को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। इस बिल से पास होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि चीन और भारत को अपना रवैया सुधारना चाहिए और तेल गैस कहीं और से खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की जामनेर MIDC में हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस का बॉटलिंग प्लांट लगाने की योजना है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट केवल कागजों पर है और कारखाने का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन पानी, पर्यावरण और रोजगार को लेकर इस प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ स्थानीय कार्यकर्ता और किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार का दावा है कि इससे बड़ा निवेश आएगा और रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। खेल समाचारों में एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सरम बरवाल ने मेंस मैराथन में 44 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया और 2.11.37 का समय लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फिल्म समीक्षा में करीब 5 दशक पहले दुनिया छोड़ चुके एक संत उत्तराखंड की पहाड़ियों में बना एक आश्रम और इस संत के जीवन से प्रेरित होकर फिल्म बनी हनुमान अंश। फिल्म की शुरुआत हिंदी फिल्मों जैसी नहीं थी, मगर फिल्म इस समय सुर्खियों में शुमार है और मशहूर फिल्म आलोचक तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म कुल रेवेन्यू के मामले में 300 करोड़ के निकट पहुंच गई है। फिल्म का पैमाना और उसकी कमाई इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत के दौरान इस फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने फिल्म की लागत को 2 करोड़ रुपए से भी कम बताया। नीप करोरी बाबा का किरदार शोभिनव सत्य ने निभाया। उन्होंने किरदार को बखूबी निभाया और जिस तरह से दर्शकों का रिस्पॉन्स आया है उससे पता चलता है कि उन्होंने इस किरदार को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है। स्क्रीन प्ले पर इतनी सफाई से काम हुआ है कि आपको कहानी के उस दौर का एहसास होने लगता है। इस फिल्म का एक गाना इंटरनेट पर वायरल है जिसे सुनील सोदी ने गाया। वे दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं। एक इंटरव्यू के अनुसार सुनील की आंखों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मदद का आश्वासन दिया है। भक्ति, संतों की जिंदगी और आस्था पर बनी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि 2025 में रिलीज हुई महाअवतार नरसिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ की कमाई की थी। कैंची धाम की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का फैसला लिया है। इससे यह पता चलता है कि कैंची धाम के प्रति आकर्षण अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक घटना की ही नहीं रह गई बल्कि प्रशासन और टूरिस्ट प्लानिंग का भी विषय बन चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,758 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 95 रुपए 82 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67 रुपए 56 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
5: श्रोताओ, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ पूनम जी की आवाज आपने सुनी ली है, मधुर आवाज में बोलूंगा, और हमारी नंदिनी आज आ गई है वापस।
4: वेलकम बैक नंदिनी।
5: सी वॉज यू नो जो मैं मुझे डर लग रहा था जब बोला कि मैं यूरोप जा रही हूँ, मैंने कहा कि आई मार लूज दिस गर्ल, बट शी इज बैक, सो वेलकम बैक नंदिनी।
6: थैंक यू। नमस्ते श्वेता, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक प्रोग्राम पे। अब हम वापस
5: जी, तो ये यंग लोगों का भरोसा नहीं होता है, यू नो कब उड़ जाए। तो एक और हमारे साथ में है, वो आज वो हमारे साथ में मेहमान है। आज हमारे साथ में प्रदीप जी मेहमान है, वो लेखक के तरीके से हैं श्रोताओ। तो प्रदीप कुमार सिन्हा लेखक, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं तो बहुत ही प्रभावित भी हुआ हूँ और मेरी भी आशाएं जगी कि मैं खुद कुछ लिखना चाह रहा था, तो शायद मेरे लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि मैं कुछ उनसे जान पाऊँ, सीख पाऊँ, और अपने श्रोताओं को भी मैं चाहूँगा कि वो भी सीखें उनसे कि कैसे अपने यू नो यादों को, अपने अनुभवों को एक किताब में संजोया जाए। श्रोताओं, जैसे कि हमने लिखा है अपने उसमें, तो थोड़ी देर के बाद में हमारे एक और मेहमान आएंगे, वो सात्विक या सनातन फूड के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पूनम जी,
4: जी
5: आज का विचार क्या है हमारे श्रोताओं के लिए?
4: जी श्रोताओं, आज के विचार का टाइटल है खूबसूरती और व्यवहार। हम सब लोग खूबसूरती से पहले प्रभावित होते हैं और बाद में व्यवहार पर सोचते
5: हैं। बिल्कुल सही बोला
4: है। तो हो सकता है कि आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे पहले दिन था, क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे।
5: क्या बात, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है आज आपने।
4: सुंदर है ये विचार जी।
5: तो एक भजन सुना जाए, ये एआई वाला भजन है।
4: ओके।
5: और आप देखिएगा, मैं मुझे बताना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी सुनिए, वो आप बताइए कि कैसा लगा आपको।
7: दिस इज व्हाट योर बाइसिकल साउंड्स लाइक टू ड्राइवर्स एज यू अप्रोच एन इंटरसेक्शन। You're totally silent. Drivers can't hear you, so make sure they can see you. Wear a brightly coloured helmet and clothing when riding. We're all just people on the move, so let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
3: 2000 Station Sponsor.

0: श्रोताओं ये भजन आपको कैसा लगा? बहुत ही ईमानदारी से हमें बताइए, अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो जरूर मुझे बताइए। ये एआई, फुल्ली एआई जनरेटेड भजन था। मैं अभी आपको एक परिचय करा रहा हूँ, हमारे शौर्य जी, शौर्य सक्सेना जी उनका पूरा नाम है। शौर्य जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते यतीन जी।
0: शौर्य जी, आपने ये भजन सुना, आपको कैसा लगा?
1: ये भजन तो बहुत ही बढ़िया है और हमने भी जो है कुछ कुछ जो है एआई पे ट्राई करा है। हमने भी अच्छा भजन बनाने का, भजन की लिरिक्स बजाने का, उसकी म्यूजिक बनाने का।
0: ओ, वाह।
1: अभी तो अभी एआई जो है इसका अच्छे तरीके से अगर यूज करा जाए तो ये सबकी बहुत हेल्प कर सकता है।
0: ये अच्छे तरीका क्या होता है?
1: इसको जो है आप ये सोचिए कि अपनी क्रिएटिव उससे आप ऐड करें। तो एक होता है कि आप जो है एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो अपना जो है म्यूजिक बना रहे हैं, ठीक है। आप बनाते हो, आपको नहीं पसंद आता है, आप फिर सोचते हो, चार लोगों से फीडबैक लेते हो कि आप बताओ। एआई में आप अपना म्यूजिक डालो, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। तो जो आपका फीडबैक साइकिल है बहुत जल्दी हो जाता है। आपको फीडबैक मिलेगा, आप उसे फटाक से चेंज करो, आप उसे और अच्छा करो, आप उसे फिर फीडबैक मिलेगा। तो आप उससे जो है आपका और रीच भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज एआई के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मॉडल्स हैं, दुनिया भर की म्यूजिक उसके अंदर है। तो उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा जो है चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर उनके जो डेटा स्टोर है उनके अंदर दुनिया भर का म्यूजिक है। तो आपको फटाक से जो है आपका सपना आप बनाइए और आपको फीडबैक मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा।
0: अच्छा, ये बात एक बार मालूम थी लेकिन मैं इस तरीके से उसको नहीं समझ रहा था। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा सौर्य जी, सॉरी मैं आपको सीधे डिस्कशन में लेके गया, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी मेरा नाम सौर्य सक्सेना है और मेरा एक जो है हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है, उसका नाम है सुर वाइब्स। आप उसको जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो survives.syd.sur.vibes vibes, सुर वाइब्स। तो ये हमारा ग्रुप है।
0: आपने भी हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स करा है,
2: फ्यूजन कर दिया।
0: आपने अगर मैं आपसे चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा? आपने हिंदी में जैसे लोगों की आकांक्षाएं ऐसे ही होती हैं कि भाई हिंदी में होना चाहिए, वो मे बी यू नो सरल हिंदी और संस्कृत और ऐसा हो नाम, जो आपने यू नो बिल्कुल इंग्लिश उसमें कर दिया सुर वाइब्स करके। किसी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वाइब्स का मतलब क्या होता है, ऐसा आपने क्यों रखा?
1: देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अभी जो है हम लोग जो है दोनों चीजें, पहले हम लोग अपना कल्चर जो इंडिया से हमारा है सनातन कल्चर, ओके, उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसको हम जो है मॉडर्न वे में कैसे लेके आए। तो वी वॉन्टेड टू कनेक्ट विद बोथ द ऑडियंसेस, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑडियंस है और जो हमारी न्यू जेन जी यंग ऑडियंस है, तो दोनों से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारा म्यूजिक भी जो है वो ऐसा है कि वो दोनों लोगों के लिए है, ओके। तो जैसे अभी हम कहीं भी जाके अगर भजन वगैरह भी करते हैं तो हम ट्रेडिशनल वे तो है ही है, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ भजन क्लबिंग जैसे। तो उससे क्या होता है, जो अपनी जेन जी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको जो है वो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा नेम ऐसा रखा था कि it relates to both of them. Yeah, so they, it's very important ki identity agar relate hoti hai sabse to they get attracted to
0: जी,
1: it.
0: जी, सही बात है।
1: associate होना चाहते हैं।
0: सही बात। तो ये भजन क्लबिंग का जैसे आपने बोला है, तो आप ये रेगुलर शोज करते हैं, कैसे है आप, कैसा करते हैं आपको?
1: So, भजन क्लबिंग जो है अभी इनफैक्ट लाइक सभी ने देखा होगा, अभी तो इंडिया में बहुत बड़ी लहर चल रही है भजन क्लबिंग की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अभी रिसेंटली दिस वीक जो है एक काफी बड़े इवेंट में गए थे। सो सी ہم لوگ جو ہے ٹریڈیشنل بھجنز تو ہم لوگ کب سے کرتے آ رہے ہیں مندروں میں گھروں میں پوجا ہوتی ہے ہر بار ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہی بھجن ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بچپن سے دیکھا ہے بھجن ہوتے ہیں اس کو ہی جو ہے ہم لوگ جیسے اب ہم آسٹریلیا میں ہیں تو ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہم کیسے کنیکٹ کریں اپنے کلچر سے تو اٹ دا سیم بھجنز بٹ اس میں ہم نے تھوڑے ماڈرن انسٹرومینٹس یوز کریں جیسے کہ گٹار ہو گیا پرکشن نئے والے ہو گئے ڈرمس وغیرہ ہو گئے اس کو تھوڑا سا لائولی اور لائولی کرا اس کو خوب اچھی طریقے تیزی سے پرفارم کرو تو پیپل کنیکٹ آپ آئیے وہاں پہ ڈانس کریے تو بھجن آپ سننے کے لیے نہیں ہے صرف بھجن آپ ڈانس کرنے کے لیے
0: اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اگر اس طریقے سے بولے جائیں جب وہ جائیں وہاں پہ تو لگے کہ آپ کو اگر تھوڑا ناچنا بھی ہے اگر پیر آپ کے اپنے آپ ہی ناچنے لگیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نہیں
1: جی جی جی
0: ہم لوگ جو ہے پیر تھرک رہے ہیں آپ کے
1: جی جی جی بالکل بالکل وہ بہت ضروری ہے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیے آج کی ڈیٹ میں جو ینگسٹرز ہیں اپنے ان کو ہم لوگ ڈیووشن بھگوان سے کیسے جوڑیں
0: جی ٹھیک ہے
1: تو اٹ از ویری امپورٹینٹ سو اور نیکسٹ جو ہے ینگسٹرز وغیرہ ہیں وہ لوگ آتے ہیں ویسی پارٹی کر رہے تو آپ پارٹی جو ہے بھجن
0: جی اچھا یہ بتائیے آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے
1: تو ابھی ہم لوگ جو ہے اکتوبر میں ہم لوگ ہوم بش بوائز ہائی اسکول میں ایوری فرائیڈے فرام 9th آف اکتوبر ٹل 31st آف اکتوبر وی آر گوئنگ ٹو ڈو بھجن کلبنگ ایونٹ ان دا ایوننگز فرام 6:30 پی ایم ٹو 8:30 پی ایم تو یہ جو ہے وی وانٹ کہ سب لوگ آئیں اپنے فیملی فرینڈس بچوں کے ساتھ میں وی وانٹ ٹو شو کیس کی بھجن کلبنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اینڈ پیپل ول انجوائے بہت زیادہ انجوائےمنٹ ہوگا وہاں پہ اور بھگوان سے بھی جڑیں گے تو وہ جو ہے مطلب اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس تو آپ آؤ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے بھگوان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور سوشلائز بھی کریں گے جو ہے
0: تو اس میں
1: اور ویسے بھی ابھی جو ہے فیسٹیول سیزن آ رہا ہے ہم لوگ کا نوراترے ہے دیوالی آ رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے ڈفرنٹ تھیمس پہ کرنے والے ہیں تو ہم لوگ ابھی سوشل میڈیا پہ ویل سینڈ آؤٹ ڈیٹیلز ایز ویل آف دیز ایونٹس بٹ اور میرا فون نمبر ہے ہم لوگ جو ہے وہاں پر سیوا بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھوجن پرساد بھی ہوگا ہم لوگ کا ایوننگ میں اور ہم لوگ کو والنٹیئرس بھی چاہیے تو اف اینی بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو جوائن اس پلیز کانٹیکٹ می میرا فون نمبر ہے 0470371242
2: یتین جی میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گی
0: پونم جی ہماری کچھ پوچھنا چاہتی ہیں
2: نہیں میں شورے جی سے بالکل سہمت ہوں کہ جیسے کہ انہوں نے بھجن کلبنگ یہ بھی ہندی اور انگلش کے دو شبد یوز اب ینگسٹرز کو انوائٹ کرنے کے لیے اگر آپ کہیں بھجن سنستھا یا بھجن کی ایک شام یا خالی بھجنوں بھری شام کچھ اس طرح کا نام رکھ تو وہ سیدھا ریلیٹ کریں گے کہ بھئی ممی پاپا جائیں گے بڑے بزرگ جائیں گے پر جب ورڈ کلبنگ جوائن کر دیا تو شاید یہ ورڈ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کرے گا اور ایون ہمارے اب جب ہم بھجن اس کلیوگ کے ماحول میں کہا گیا ہے کہ کیرتن ہی سب سے آسان طریقہ ہے مال ایشور کو پانے کا تو شورے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں
1: تو
0: میں اپنی نظری سے پوچھے تھے وہ کیا سوچتے ہیں ہورس ماؤتھ ہے
3: جین زی اپینین ہاں نہیں مجھے لگتا ہے بہت اچھا پروگرام ہے لائک یہ بہت اچھی اسٹریٹجی بھی ہے تو کہ جیسے کہا گیا ہے کہ لائک وہ کلبنگ نام رکھنے سے تھوڑا سا اپیل کرتا ہے ینگر جنریشن کو اور وہ نہیں لگتا کہ ہاں کہ لائک میرے ایج گروپ کے بھی وہاں پر لوگ ہوں گے میں ان سے ریلیٹ کر پاؤں گی بات کر پاؤں گی اور اس سے کنیکشن بڑھتا ہے کمیونٹی اسی سے بڑھتی ہے جب آپ جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو ان کے ساتھ آپ فرینڈ شپس بنا سکو یا پھر ریگولر اس کے ساتھ میٹنگ کر سکو تو آئی تھنک کہ اس طریقے سے کنیکشنز بھی بڑھتے ہیں اور پھر زیادہ وہ کلوسیوٹی بھی آتی ہے اپنے ریلیجن وغیرہ سے
0: لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو प्रदीप जी, अब आपको मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ,
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप जैसे लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसमें मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि
2: अगर वहाँ सारे यंगस्टर्स हैं तो मैं क्या करूँगा।
0: एग्जैक्टली
4: नहीं तो इसका इलाज ये है इतिंदर जी कि बड़े लोग भी जाएं, यंग लोग भी जाएं, मिक्सिंग तो जरूरी है ना बच्चों और बड़ों में, बच्चे और बड़ों में जब तक मिक्सिंग नहीं होगी तब तक मजा नहीं है।
0: एग्जैक्टली
4: अब बड़ों को
0: लेकिन ये है ना प्रश्न ये था प्रदीप जी कि अगर मान लो समझो आप ही सुन रहे हैं और आपको यार ये तो लगता है कि यंग लोगों का है, मैं इसमें यू नो मेरा इसमें क्या काम,
4: आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा।
0: Okay,
4: आपको ये सोचना पड़ेगा अरे इतना अट्रैक्टिव है बच्चे लोग आएंगे हमें भी अच्छा लगेगा,
2: नहीं हम जा रहे हैं, चलो बच्चों तुम भी चलो।
4: हाँ, नहीं नहीं नहीं इसे इस तरह से करिए बच्चे लोग कहें कि चलिए मम्मी पापा आप भी
2: चलिए। हाँ दोनों तरफ से
0: हम दोनों के लिए है,
4: हाँ, हम सबके लिए।
2: ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बड़े भी शामिल हो सकते हैं और बच्चे भी, बच्चे इन द सेंस पेरेंट्स
3: बोलते हैं ना कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं लेकिन ये तुम्हारे लोग एज ग्रुप के लिए भी फंक्शन है तो वो ज्यादा अपील होंगे, तो कि अगर आप सीधा बच्चों को ये बोलोगे कि हाँ आज जैसे इवेंट में जाना है वहाँ पर भजन सुनेंगे तो इतने सारे बच्चे नहीं होंगे जो हाथ खड़ा करके ऐसे बोलेंगे हाँ मुझे जाना है, पर जब आप ये बोलोगे कि हाँ वहाँ पर जैसे बहुत सारे एज तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं ठीक है तुम वहाँ पर मिल पाओगे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे तो ज्यादा वो कनेक्ट।
0: मोदी जी ने इसका
2: जी ऑलरेडी आगवान कर दिया,
0: मोदी जी ने ऑलरेडी वो कर दिया है, वो अपनी वो भी लेके गए थे डपली,
2: जी डपली लेकर वो वीडियो बहुत
0: वो भी लेके गए थे। तो सौर्य जी प्रोग्राम के बारे में दोबारा से बता दीजिए और अगर श्रोताओं कोई वॉलंटरी भी बनना चाहता है कुछ पार्टिसिपेट करना चाहता है तो भी आप सौर्य जी को संपर्क कर सकते हैं। तो सौर्य जी दोबारा से प्रोग्राम और अपना फोन नंबर बताएंगे तो अच्छा है।
1: जी जी जी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो होमबुश बॉयज हाई स्कूल में एवरी फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October फॉर 4 weeks है फ्रॉम 6:30 PM टू 8:30 PM और वहां पर हम लोग भजन क्लबिंग के साथ साथ थोड़ी सी सेवा डिवोशनल म्यूजिक भी होगा प्लस भोजन प्रसाद भी होगा। सो प्लीज अगर कोई भी सेवा करना चाहता है आगे आके तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मेरा फोन नंबर है 0470-371-242। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट दिस मेगा इवेंट इन होमबुश और वहां पे जो है हम लोग ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोसाइटी प्लस जो हमारा एग्जिस्टिंग, मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था यतीन जी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारी जनरेशन है यस सब लोग मतलब वहां पे जो है एवरीबडी एंजॉयज, मतलब हम लोग उसमें देखा है हमने पेरेंट्स के साथ में किड्स डांस करते हैं।
0: ये हुई ना पूनम जी आपको
2: आखिरी सवाल शौर्य जी कि भजन कौन गाएगा, इज इट जस्ट लाइक आप
0: लाइव होगा
2: रिकॉर्डिंग लाइव हो
1: तो ये जो है लाइव परफॉर्मेंस होगी पूनम जी, तो हम लोग गाएंगे प्लस वहां पे जो लोग आएंगे उनको भी मौका मिलेगा। तो ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बस गा रहे हैं, तो बट द होल पॉइंट इज कि सब लोग मिलके जब गाते हैं ना तो एक एनर्जी अलग आती है और कनेक्शन जो होता है आप भगवान के साथ फील कर सकते हो वहाँ पे आप फिर।
2: बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक है,
4: बहुत अच्छा बहुत।
0: धन्यवाद सौर्य जी आपके समय के लिए एंड वी विश यू रियली ऑल द बेस्ट, भगवान आपको जो है ना इसके माध्यम से, पूनम जी ने मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि भजन के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है
2: जी, तो कलयुग में यही कहा गया है,
0: टेस्ट थोड़ा सा बदल गया तो वरना मेरे जैसे लोगों को तो कोई चांस ही नहीं था। तो सौर्य जी अगेन धन्यवाद, आपका रविवार अच्छा हो हम ऐसी कामना करते हैं।
5: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके, ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें? पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें, NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
6: 2OO स्टेशन स्पॉन्सर।
7: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट। साथ ही स्पेशल सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल हम 24/7 असिस्टेड लिविंग रजिस्टर्ड नर्सिंग रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं हम माई एज केयर NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं श्री ओम केयर जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें श्री ओम केयर.org.au धन्यवाद

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, अब हमारा समय आ गया, जैसे कि हमने बोला है, हमारे प्रदीप जी, द लेखक जिसको कह सकते हैं, राइटर प्रदीप जी, आज मैं आपको दर्पण रेडियो में स्वागत कर रहा हूं. दर्पण रेडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है. प्रदीप कुमार सिन्हा, द ऑथर.
2: थैंक यू यतिंद्र जी, और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार.
1: प्रदीप जी, जब मैंने आपका वो पहली बार जब आपने शेयर करी, लेकिन तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा, मेरे आप जो है ना ये उलझन को कैसे आपने लिख ली?
2: अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कि हम किताब के बारे में बात करें, बुक के बारे में बात करें, ऐसा है कि आप ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए. पेशेंस इस तरह से चाहिए कि आप जब आपको मौका लगे अपना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइए.
1: अच्छा,
2: एक पेज लिख लीजिए, आधा पेज लिख दीजिए, दो लाइन लिख दीजिए, फिर उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, फिर आप दूसरे दिन नहीं तो अगले हफ्ते लिखिए. इस तरह से एक साल दो साल में आपकी तैयारी हो जाएगी, काफ़ी मटेरियल होगा, फिर आप उसे कंपाइल कर लीजिए. देखिए, ऐसा है कि एक डिस्क्लोज़र मुझे ये भी करना है कि जो बुक है ये AI की हेल्प से कंपाइल की गई है. इसकी जो लैंग्वेज की पॉलिशिंग हुई है वो भी AI के थ्रू हुई है. तो ये है कि अगर आपके पास छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, आपके पास जो आपके दिमाग में आता है वो अगर आप लिखेंगे, उसे आप कंपाइल कर सकते हैं. आजकल बड़ी आसानी से कंपाइल करके आप उसकी जो लैंग्वेज तो वो थोड़ी सी रिफ़ाइन करिए, और फिर उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसको चेंज करिए आपको जैसा लगता है, एंड आप उसे पब्लिश कर सकते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इस सीजन राइटर की तरह आप कहीं अकेले में जाकर एक एयरबीएनबी में रहकर जहां समुंदर के किनारे आप बैठकर लिखेंगे, तो ये हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल. लेकिन आप छोटा छोटा लिखकर,
3: तो क्या मैं ये समझूं प्रदीप जी के जर्नलिंग उसकी शुरुआत है, स्टार्ट जर्नलिंग?
2: यस, आप अपनी डायरी लिखिए.
3: जी जी,
2: डायरी में
3: रोज के इवेंट्स,
2: रोज के इवेंट्स लिखिए. आप उसमें अपने विचार लिखिए, आपको किसी से आप मिले आपको कैसा लगा. जैसे कि आप कभी किसी से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते हैं. ये सब कहाँ से आता है, इस बात की चर्चा भी इस मेरी किताब में है कि इसके, लेकिन मेरे ख्याल से इसे इसको थोड़ी सी देर के बाद,
1: थोड़ी सी देर के बाद. ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि ये कैसे संभव हुआ जो हम

0: जैसे लोग हैं कई चीजें दिमाग चलने होती कई चीजों में मैं जिस तरीके से जीवन को देखता हूं मैं वो लिखना चाहता हूं मैं दो चार जाने के पहले मैं दो चार पेंटिंग बनाना चाहता हूं और किस हर आदमी का एक अपना डायमेंशन होता है ऐसे मैं समझता हूं बात को एक समस्या को एक सुझाव को आप किस एंगल से देखते हैं वो आपका एंगल होता है मैं ऐसे मानता हूं एक और चीज है कि हर आदमी जीती जागती किताब है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है
1: हम सब की कहानी अलग अलग है
2: बिल्कुल
0: हर आदमी अपने संस्मरण अपने जीवन के अनुभव वो लिख सकता है और यू डोंट नो कि किसके काम में क्या जाए
1: कभी कभी जितेंद्र जी ऐसा है कि आप आज घर जाइएगा तो एक पेज जरूर लिख दीजिएगा फिर एक दो साल के बाद हम आपकी किताब का विमोचन करेंगे
2: और फिर आपकी सीटें पलट जाएंगी फिर।
0: अब जैसे एक में एक शेर चलो कर ही लेता हूँ अब ये शायद आपसे मैं हेल्प चाहता हूँ दो महीने पहले एक मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ वो ये कॉम्प्लीमेंट था कि तो हमारे नए क्लाइंट हैं काफ़ी बड़े क्लाइंट होटलियर हैं वो तो वो भी भारतीय हैं तो उन्होंने कहा कि इतने दिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तो मैंने समझा कि ना फीडबैक टिपिकल जो होता है कि ना मैंने कहा गो अहेड एंड डू इट कहने लगे कि मैंने एक वो स्लीप अपेनिया मशीन आती जो सोने के लिए आती है वो लेना बंद कर दिया है मैंने कहा ग्रेट बहुत अच्छी बात है तो थोड़े पॉज के बाद वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ बिफोर यू फॉरगेट और ये मैंने कहा मैं अकाउंटेंट हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई देन ही सेट सीरियस मोड की जब से आपने मेरा काम संभाला है आई कैन स्लीप पीसफुली ऐसे मैंने लाखों डॉलर और ये चीज़ एक कम्प्लीमेंट मेरे लिए मतलब आप समझ सकते हैं तो उस दिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि अकाउंटेंट का रोल कितना बड़ा है समाज में मैं कई तरीके से उसको कर रहा था लेकिन उस दिन वो टेस्टिमनी की
1: थी अच्छा यतीन्द्र जी इसका एक और एंगल है उन्होंने आप पर पूरा भरोसा दिखाया पूरा क्योंकि आप अच्छी तरह से काम करते
0: ठीक
1: हैं अब यह है कि आपकी बात आपने रेडियो पर बताई आपकी बात और लोग भी सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा मैं भी इसी तरह से काम क्यों ना करूं कि मुझे भी इस तरह का कम्प्लीमेंट मिले तो ये जो इस तरह की पॉजिटिव बातें हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं आप ने इसे शेयर किया बड़ी अच्छी बात है और इसका इसके सब हर बात के रिपरकशंस होते हैं इसका भी जिक्र इस किताब में है
0: क्या बात है क्या बात तो हाँ नंदिनी जी आप बताओ आप क्या सोचते
3: मैं एक्चुअली ना थोड़ी सी बुक के बारे में और पूछना चाहूँगी कि ये लाइक कैसे इंस्पायर हो कि आपने क्यों स्टार्ट करा था बुक लिखना और लाइक किसके बारे में एक्चुअली बुक
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है या ऐसा है कि आपने जो यतीन्द्र जी पूछने वाले थे आपने पूछ लिया बढ़िया बात है मेरा शुरू से मेरा दिमाग कुछ इस तरह से चलता है कि थोड़ा सा अलग करना चाहिए कुछ अलग करो बहुत दिनों से प्रयास ये था फिर मैंने जो इस तरह की बुक्स काफ़ी पढ़ी कि स्पिरिचुअल बुक्स कि मरने के बाद क्या होता है जैसे कि कई चीज़ें हैं जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको पता होगा
3: हाँ जी
1: लोगों को होता है आपको पता होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो वो अपने पास्ट लाइफ में चले जाती हैं और इसके काफ़ी ऑथेंटिक प्रूफ हैं कि पास्ट लाइफ तो है ही अच्छा फिर इसके साथ साथ ये मुझे लगा कि कुछ इस तरह से किया जाए कि सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं जन्म हुआ और मृत्यु उसके बीच की होती है क्यों ना हम इसे उल्टा कर दें कि मरने के बाद और अगले जन्म तक क्या होता है तो इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए उसमें
3: बिल्कुल तो कि खुद एक्सपीरियंस तो करा नहीं है
1: हाँ खुद एक्सपीरियंस तो किया नहीं किसी को याद भी नहीं रहता है
3: बिल्कुल
1: लेकिन मैंने सोचा ये देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह होते हैं इस तरह से तो इसको किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाए, तो उसको मैं धीरे धीरे कुछ कुछ लिखता रहा। फिर ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम समय लगा इसमें, लेकिन यह है कि ये इस बुक में सबसे पहले आदमी की मृत्यु होती है। हालांकि मुझे अब ये लगता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना इस चीज़ से शायद
3: बहुत क्रिएटिव टेक है।
1: हाँ हाँ, एक्चुअली शायद पता नहीं कि इससे शुरू करना है या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये शायद सोचता था सीधे सीधे मृत्यु से अगले रीइनकार्नेशन तक इससे इसे किसी तरह से प्रस्तुत किया जाए। तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था और कुछ कुछ मेरे पास लिखा हुआ भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके जिस तरह से ये किताब आई है ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आई एम एबल टू डू दैट। एक्चुअली इसके कुछ पार्ट्स तो ऐसे भी हैं कि आई एम सरप्राइज्ड कि इट हैज़ कम आउट ऑफ मी। अच्छा, तो ये है कि इसके तीन पार्ट्स हैं। वन इज व्हेन वन डाइज, कि कैसा उसे महसूस होता है।
3: तो ये लाइक आपने साइंटिफिक वे में ऐसे लिखा है या लाइक स्टोरी बुक फॉर्म में लिखा है?
1: स्टोरी बुक फॉर्म है।
3: ओके,
1: एक्चुअली इसमें ऐसा है, इसमें 25 चैप्टर्स हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है कि डेथ होती है उसे कैसा लगता है, क्या होता है। सेकंड पार्ट में देर इज एजुकेशन पार्ट, वो सीखता है अपनी कमियों से। थर्ड पार्ट में ही इज प्रिपेयरिंग टू रिटर्न बैक। तो पहले पार्ट में होता ये है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे पता नहीं लगता है। सडनली उसे लगता है कि अरे मैं अच्छी तरह सांस ले रहा हूँ, मेरा तो बड़ा मुश्किल से अस्थमा था मुझे, और मेरे यहाँ दर्द होता था, वहाँ दर्द भी नहीं है। बहुत कोशिश करता है, वो सोचता है कि ये हुआ क्या। फिर वो सोचता है कि कोई लोग वहाँ पर जमा होने लगते हैं, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, वो उठाने की कोशिश करते हैं। वो सोचता है अरे क्या हुआ, ये कहाँ से आया, उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो उसी की बॉडी है।
3: Wow.
1: और वो ही हैज़ गॉन इन टू सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक्चुअली ये कहा गया है अपने शास्त्रों में भी कि तीन बेसिक बॉडीज होती हैं। वन इज़ स्थूल बॉडी, जो कि हमारी पंच तत्वों से बनी होती है, जो कि जब हमारा क्रिमेशन होता है तो उसमें पंच तत्व में विलीन हो जाती है। दूसरी होती है स्थूल बॉडी। स्थूल बॉडी में आपका आपके तीसरा नेत्र खुल जाता है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने सोचा होगा कभी कभी कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप इसे करें ना करें। सो दैट इज़ वेरी डीप बी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद इन यू। आपने कभी महसूस किया
2: जी, वो हायर बीइंग है जो आप।
1: अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब वन गोज थ्रू दिस लाइफ रिव्यू में ऐसा होता है कि नॉट ओनली इट इज़ समथिंग लाइक, ये कहा गया है कि इट इज़ समथिंग लाइक होल ऑफ योर लाइफ इज शोन यू इन वन इंस्टेंट ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि
3: कुछ 7 मिनट फ्लैशबैक कुछ ऐसा होता है ना,
1: वो हाँ जो भी है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप जब लिखने जाते हैं तो उसे इंस्टेंट में तो नहीं लिखा जा सकता, धीरे धीरे करके लिखा जाता है। तो जब उसे लिखा जाता है तो उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंस्टेंसेस होते हैं, उसमें अगर मैंने यतींद्र जी से कोई बात कर दी जो यतींद्र जी को बहुत बुरी लगी, तो मेरी क्या फीलिंग थी उस बात को कहते हुए, मैंने क्यों कही और यतींद्र जी को कैसा लगा, ये दोनों की भावनाएं वहाँ पर आती हैं।
3: हाँ जी,
1: जब की लाइफ रिव्यू होता है तो उसमें तो इस तरह की बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और जो मैंने अंतरात्मा की बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो ही हियर्स समथिंग, तो उसे क्या लगता है कि ये कहाँ से आवाज़ आई। तो वो उसकी अंतरात्मा एक तरह से उसके साथ प्रकट होती है एंड वो अंतरात्मा उसको ही टेक्स हिम ऑन एजुकेशनल जर्नी कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था ये काइंडनेस का क्या रोल है अप्रिशिएशन का क्या रोल है आपस की रिलेशनशिप का क्या रोल है तो इसमें कई बातें हैं एक्चुअली इसकी इसमें जो सेंट्रल थीम है उसमें ये विवेक जो हीरो है उसकी वाइफ दो बच्चे और ये विवेक का एक और भाई है छोटा भाई
3: जी।
1: तो होता ये है कि उसकी माँ बीमार होती है नर्सिंग होम में होती है इन दोनों भाइयों की तो जो विवेक है बड़ा भाई वो हर वीकेंड उसे देखने जाता है बड़ी लंबी ड्राइव करके दो साल छोटा भाई कभी जाता है कभी नहीं जाता है इसी तरह से माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो बड़ा भाई है ये सारे अरेंजमेंट करता है और छोटा भाई फ्यूनरल के बाद थोड़ी देर बाद पहुँचता है तो उससे बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसा भाई आया माँ के उसमें नहीं आया या देर से आया तो जब तेरहवीं होती है तो इस सब के सामने जितने रिश्तेदार होते हैं उसको उनके उस पर कमेंट कर देता है कि कुछ लोगों के पास समय नहीं है तो छोटे भाई को बहुत बुरा लगता है तो ये जो बात है उसके दिमाग में रहती है मरने के बाद भी वो सोचता है यार मेरी गलती थी कि छोटे भाई की गलती थी मुझे फ़ोन उठाकर उससे बात कर लेनी चाहिए थी उन्होंने 11-12 साल तक बात नहीं की आपस में जिस सिर्फ इसी वजह से तो इस तरह ये कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक और जो ये जो अनरिजॉल्व बिजनेस है ना दो भाइयों का ये दिस इज शोन एज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन हैज टू कम बैक
2: जी
1: जो कर्म हमारे अनरिजॉल्व रह जाते हैं उसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं जन्म लेते हैं तो इसमें यह भी दिखाया गया है कि जैसे कि आपने बोला कि एक आप किसी ने अप्रिशिएट किया और आपको अच्छा लगा आपने बताया लोगों को तो उनको लगता है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए
0: एक मैं अगर बात कह दूं मैंने इसका इस बात को ऐसे लिया है कि ये प्रोफेशन के लिए है मैंने अपने से इसको हटा दिया है कि अकाउंटेंट का जीवन में कितना बड़ा रोल है आज मुझे इस चीज़ को कहते हुए गर्व भी है और थोड़ा एहसास भी हो रहा है कि हमने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं समझा कि अगर आपके पास में एक अच्छा अकाउंटेंट है वो आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है
1: उस आदमी ने अपना मास्क हटाया उसके लिए बेनिफिट हुआ आपके लिए बेनिफिट ये हुआ कि आपका भी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया
0: नहीं वो नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि
1: इसका दूसरा एंगल मैं बता रहा हूँ कि इससे समाज पर क्या फर्क पड़ता है समाज में लोग जब अच्छी बातें सुनते हैं तो वो भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं
2: इसके लिए
1: कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिसका असर नहीं होता है हर एक्शन का असर होता है तो हम कहाँ तक पहुँचे जतेंद्र जी
2: मेरे ख्याल से अब एक छोटे से अंतराल का
3: नहीं बैक टू द प्लॉट वो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में अनरिजॉल्व्ड इशू रह जाते हैं तो आप रीइंकार्नेशन के बारे में बात कर रहे थे उसमें
1: हाँ तो ऐसा है कि उसके दिमाग में एक कसक रह जाती है कि शायद मुझे फ़ोन करके उसे बात कर लेनी चाहिए थी मेरा छोटा भाई है लेकिन जब तक वो जिंदा था तब तक उसे लगता था यार ये बड़ा गधा आदमी है मैं मतलब इतना इररेस्पॉन्सिबल है मैं इससे क्या बात करूँ उसकी गलती है उसे फ़ोन करना चाहिए लेकिन ये बात सिर्फ इसी बात को लेकर उसे ये लगता है कि उसे रिजॉल्व कर लेनी चाहिए थी
0: तो एक काम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रदीप जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और फिर हम क्योंकि हमें स्पॉन्सर को भी ध्यान में रखना है उनको भी हेल्प करना है वो हमें हेल्प करते हैं

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओ आपको कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स में बता दें कि हमारी ऋचा जी एक माता की नवरात्रि भजन नाइट का आयोजन कर रही हैं जिसका नाम है ट्रिपल एस संगीत संस्कृति सनातन तो ये जो माता की चौकी समझ लीजिए या माता के भजन होंगे नवरात्रि के दौरान 18 अक्टूबर को 5 से 9 तक इसका आयोजन है Gravilla Room, Wentworthville Community Center, 2 Lane Street, Wentworthville. अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहें, तो रिचा जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनका नंबर है 0413-561-293. तो ये तो रिचा जी ऑर्गेनाइज कर रही हैं. फिर राजेश जी लिखते हैं, मैं कुछ सबके ख्यालात भी शेयर करना चाहूँगी. हमारे इस प्रोग्राम के बारे में गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम प्रदीप जी लिखते हैं वाह क्या बात है एआई का भजन हेमलता जी लिखती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम वेरी नाइस प्रोग्राम इट इज़ अनबिलीवेबल इट्स सो रियल एंड वेरी वेल संग आई लाइक्ड इट फिर जो अगला आया है विचार वो ये है कि वेरी नाइस भजन स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन It will connect them to Lord Ganesha. Leela ji kehti hain, AI bhajan bahut hi achha laga. Phir ek aaya hai message, Good morning Darpan family. Great start with news and I am so impressed with bhajan clubbing. AI bhajan has no criticism because it is a prayer. But my preference for prayer would be through a person who is heart-to-heart praying. फिर लीला जी लिखती हैं पूनम जी के सुंदर विचार पर आधारित मेरी एक स्वरचित रचना है जिसका नाम है सुंदरता मेरी नज़र में जिसके प्रेम में प्रेम भरा जिसके मन में प्रेम भरा हो जो करुणा का गहरा सागर उसका तन चाहे जैसा हो वह नर है सुंदरता आगर जिसके दिल में सुंदर भाव हो जो प्रभु को कण कण में जाने जो सबको ही सुंदर समझे जग उसको सुंदर सुंदरतम माने सेवा का जिस घर पर पहरा सत्य जहां स्वागत करता मुस्कानें वहां द्वार खोलती वह घर की सुंदरतम लगता सत्य बात तो मधुरम भी हो जो कर सके किसी का हित भी जो जीवन को स्नेहिल कर दे वह होती सुंदरतम निधि यूं तो कोई नहीं कह सकता झूठ भी जग में सुंदर होता काम किसी का जिससे बनता झूठ भी वह सुंदर ही होता गोरे गोरे कोमल कर को जग में सुंदर माना जाता लेकिन दान व कर्मशील कर सचमुच सुंदर है कहलाता धोखे रिश्वत से आया धन धन तो कहला ही सकता है पर मेहनत से प्राप्त किया जो वह धन सुंदर कहलाता है खिली हुई मुस्कान सरल सी निर्मल दर्पण निर्मल शुभन कभी बेयार बसंती सुंदर कभी शीत आतप या फिर धन तो इस तरह से लीला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी लंबी कविता आपने लिखी बहुत ही सुंदर ढंग से क्षमा चाहूँगी पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारे और भी मैसेजेस पढ़ने होंगे भजन प्लस कभी क्लबिंग इज इक्वल टू भक्ति माइनस टेनमेंट फिर एक आया है मैसेज भजन क्लबिंग इज फॉर एवरीवन आई अटेंडेड द बिग भजन क्लबिंग इन टाउन हॉल एंड इट वाज फैंटास्टिक ग्रेट फॉर ऑल एजेस कांग्रेचुलेशन टू शौर्य जी एंड गुड लक उत्तम विचार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा जी पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई व्हाई शुड आई परचेज अ बुक वेयर इज द सस्पेंस तो इनडायरेक्टली कहा गया है कि पूरी बात ना खोलें रामकृष्ण बंसल जी कहते हैं अभी लाइव रेडियो सुन रहा हूँ इंगेजिंग बातचीत और समुद्र गाने डॉक्टर लीला जी फिर लिखती हैं डॉक्टर प्रदीप सिन्हा जी की वार्ता बहुत रोचक और प्रेरक लगी प्रदीप जी पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई फिर आया मैसेज नाइस रेडियो प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय प्रदीप जी रिचा जी लिखती हैं थैंक्स फॉर द अनाउंसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट्स विद नाइस एंड न्यू भजन फॉलोड बाय डिटेल्ड समाचार nice interview with Pradeep ji. Songs are of great joy. So, Yatin ji, aapko bhi tarif, compliment mila hai.
2: Finally.
1: Bahut sundar gaane lage hain sab.
2: To ek Poonam ji, hamare Sameer Mehta ji abhi phone pe aa gaye hain.
1: Ji.
2: Wo ek bahut acha kaam kar rahe hain, wo Nepali jo abhi wahan pe tsunami aayi, uske bare mein. Sameer ji, aapka Darpan Radio mein bahut bahut swagat hai.
3: मेरा बहुत-बहुत नमस्कार
2: जी। समीर जी, बताइए आपने जो नई संस्था आपने बनाई है और क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए।
3: मैं आपको सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि नेपाल में जो डिजास्टर हुआ उसके बाद में हमारे सब कम्युनिटी लीडर साथ में आए हैं और हम लोगों ने अभी मिलकर एक नई संस्था शुरू की है, वो जस्ट एट इन्फेंसी स्टेज। उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फाउंडेशन फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन इज टू कलेक्ट मनी एंड देन इंश्योर दैट इट रीचेस टू द नीडी पीपल एट द ग्राउंड एट नेपाल। सो उसके लिए हम लोगों ने अभी 18 अक्टूबर को एक इवेंट फंड रेजिंग डिनर ऑर्गेनाइज किया है। और तो हमारे इसमें ऐसे कहने का था कि हम सब लोग अभी कम से कम 15-20 साल तो हो गए ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम सब लोग अभी ऑस्ट्रेलियन है, तो एज ए ऑस्ट्रेलियन हम लोग क्या कर सकते हैं, कहां भी डिजास्टर हो तो उसमें हम लोग कैसे फंड इकट्ठा कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि मदद जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाए, उसमें एडमिन फीस ना हो। तो ये वजह से हम लोगों ने अभी ये फाउंडेशन चालू किया है। तो इसमें अपने बहुत कम्युनिटी लीडर साथ में जुड़ गए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो मदद है वो एक्चुअल नीडी लोगों के पास पहुंच जाए।
2: तो ये इसमें DGR स्टेटस एक चीज होती है, वो भी है क्या?
3: यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यस, तो अभी हमारे पास तो DGR स्टेटस नहीं है फाउंडेशन के पास, क्योंकि अभी चालू हुआ है, लेकिन हम लोग जो सेवा ऑस्ट्रेलिया है, फिर रेड क्रॉस है और भी 2-3 संस्थाएं हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जो कोई भी डोनेशन करेगा उसको DGR स्टेटस का रिसीट भी मिलेगा, plus we will also ensure that there won't be any administration fees and funds will directly go to PM Nepal Care fund, after that it will be utilized from the fund.
2: Yeah, so to ek main baat kehna chahta hu, aap logon ko shayad zarur malum hona chahiye, main to aise kehta hu ki Pradeep ji, yahan pe jo donation hum dete hai na, aap agar $1 dete ho to agar 1/3 bhi pahunch jata hai कॉज के लिए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 1/3
1: आप तो बाकी का सारा एडमिन फी और ये सब में निकल जाता है,
2: सारा का सारा उसमें निकल जाता है। आपको मिलते हैं ना, जैसे आप कभी रेलवे में जाएंगे तो लड़के खड़े होते हैं डोनेशन के लिए, वर्ल्ड विजन ये दे दो, उनको 1/3 लगभग 30-40% उनको जाता है।
1: ओके, ये तो नई बात है। जो
3: आपके लिए हमारा वही प्रयास है कि जितना मतलब जीरो, कोई भी एडमिन फीस ना हो। समझो हमने 40,000-50,000 कलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा पैसा उधर जाए। तो हम लोग ऐसे तो जो फंड रेजिंग का डिनर का जो कॉस्ट भी है वो भी कम्युनिटी लीडर्स अपने जेब से पे कर रहे हैं, तो वी आर फंडिंग इट आवरसेल्फ टू सो दैट एंटायर मनी रीचेस टू द नीडी पीपल।
2: एक बार समीर जी दोबारा से जो प्रोग्राम का डिटेल है वो शेयर कर दीजिए, अपना फोन नंबर भी शेयर कर दीजिए।
3: श्योर, प्रोग्राम है 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से ग्रैंड रॉयल ग्रैनविल में, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं सभी से अनुवाद करता हूँ आप भी जुड़ जाइए, लेकिन इट विल बी एन इनविटेशन ओनली इवेंट। तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0431-317-685। मैं बताता हूँ 0431-317-685, and then we'll be more than happy to officially invite you for the event, and we'll just ensure that your money reaches to the needy people.
2: Great. Samir ji, aaj aapne hame jo samay diya uske liye bahut bahut dhanyawad.
3: Ji, bahut bahut shukriya Gupta ji, aapka bhi mujhe ye opportunity dene ke liye aur ye initiative ke bare mein aapke sabhi shrotaon ko batane ke liye.
2: Dhanyawad. प्रदीप जी
4: जी,
2: 18 तारीख को 2 तो प्रोग्राम अभी हो गए।
4: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज
2: बहुत बहुत फंक्शन हो रहे हैं,
4: एक्टिविटी हो रही है।
2: तो थोड़े एक दो और हम आपसे बातें करें।
4: बिल्कुल,
2: कि एक जैसे कि آسمان جی نے بولا ہے کہ بھائی سسپنس شیئر نہیں کرنا ہے ورنہ پھر لوگ کیوں خریدیں گے کتاب کو
4: نہیں اس کا سسپنس ایسا ہے کہ خریدیں گے کیونکہ اس انترآتما جو ان کے ساتھ آ گئی انہیں گائیڈ کر رہی ہے
2: جی
4: کیسے گائیڈ کیا کیا بتایا
2: ہر وقت وہ اس میں
4: کس طرح کے سین سے تو جیسے کہ ایک سین میں اور بتا دیتا ہوں کہ وویک ہیرو آئے اپنے آفس سے جوتے اتاری تھے کہ ان کی بیٹی آدیتی آ گئی ان کے پاس کہ پاپا پاپا دیکھو میری ڈرائنگ پاپا نے دیکھا تھینک یو اسی ٹائم فون بولا فون رنگ کیا تو انہوں نے فون اٹھا لیا تو وہ بچی کو اچھا نہیں لگا تو یہ جو بھاؤ تھا بچی کا کس طرح سے اس کو محسوس ہوا اور ان کا اگنورینس وہ سب ان کے سامنے آ گیا تو یہ اس سے کافی اٹ از سارٹ آف ایجوکیشن ہاؤ ٹو لیو لائف تو اسی طرح کے
1: بہت بڑھیا کہ ان سیڈ تھنگس
4: ہاں
1: جو آپ اس سمے نہیں ریلائز کرتے بٹ اس نے جس کنڈیشن میں اب تھے وہ تو وہ سارے بھاو ان کو اب آ رہے ہیں
4: دونوں طرف کے اپنے بھی اور ان کے بھی سو اٹ از
1: ایجوکیشن یہ معمولی سی بات ہے آپ کا بچہ آیا اور بات کی آپ نے فون اٹینڈ کرنے میں لگ گئے تو آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں
4: کہ آپ کے لیے فون زیادہ
1: امپورٹنٹ ہے
5: اور یہ نا جیسے لائک ایوریج ڈے ٹو ڈے لائف ریلیٹ کر پائیں گے لوگ تو کہ یہ بہت لائک کامن انسٹنسز ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بک وہ ان کو ایک نیا پرسپیکٹو دے گی کہ ایسے بھی لوگ فیل کر سکتے ہیں اس بات کو
2: پردیپ جی میں آج میں خود بھی اپنی کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اور شرطاؤں سے سب سے میں ڈیلی ڈائری لکھتا ہوں
4: بہت اچھی بات ہے
1: پھر تو آپ کتاب لکھنے کی پرابلم سب کی سالو ہو گئی
2: میں کافی ڈائریاں ہو گئی ہوں گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ عمر میں لوگوں کو معلوم پڑ جائے گی جبکہ میں ابھی 18 سال کا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں پردیپ جی میں پورے دن کو ری بجٹ کرتا ہوں رات کو سونے کے پہلے لکھتا ہوں اور پھر مجھے احساس ہوا اوہ میں نے پردیپ جی کو کچھ ایسے بولا چاہے بھلے ہی پردیپ جی نے نوٹس کرا یا نہیں کرا میرا کیا کام ہوتا ہے صبح اگلے دن سب سے پہلے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں پردیپ جی کو فون کروں گا پردیپ جی آئی ایم ریلی سوری کل ایسے منہ سے نکل گیا آئی ڈن مین اٹ اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو اس سے نکال دیا ہے
4: اس بات کا بھی ذکر اس کے بارے میں
1: صحیح کہہ رہے
4: ہیں اس بات کا بھی ذکر ہے اس میں اور اس میں ایسا ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیپٹر کھول لیجئے کوئی بھی پارٹ آپ اسے سارٹ آف انڈیپینڈنٹلی پڑھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی
2: چھوٹی چھوٹی
4: کہانیاں ہیں
2: تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اگر جیون جئیں گے تو غلطیاں یہ سب تو ہوگا
4: ہوگا بالکل ہوتا سب سے ہوتا ہے
2: ورنہ پیرانوئڈ ہو جاؤ گے لیکن اس کا احساس ہونا اور اس احساس کو آپ کو آگے ایکسپریس کر دینا کہ بھائی ریلی آئی ایم سوری یا یو نو جو بھی آپ کا بھاؤ ہے
4: یہ آپ کو ریلیز کرتا ہے جیسا آپ نے کہا
2: وہ معاف کرے نہ کرے وہ الگ
1: آپ کی طرف سے ہو گیا بہت بڑی
2: وہ ایک میرا پہلو رہتا ہے اور میں کافی سالوں سے مطلب یہ چیز کر رہا ہوں اور اٹ گیو می میں اسے نکل جاتا ہوں پھر اور پھر ایک اور میرا بھاؤ ہوتا ہے کہ کل کا یہ تین دن مر چکا ہے لیٹس لیو ٹوڈے
4: ٹھیک ہے اچھی بات ہے
2: بات ختم
4: ہاں بالکل بالکل
2: اس کے اوپر یہ نہیں کل میں نے بولا تھا میں کھڑا ہوں ارے بھائی ہو گیا ابھی ہو گیا کیا کریں گے اچھا یہ بتائیے آپ نے انگریزی میں کیوں لکھی اب ہندی کا ریڈیو پروگرام بھی کرتے ہو ہندی میں تو
4: ہندی کا پرچار اور پرسار بھی کر رہے ہیں دیکھیے ایسا ہے کہ جو میرے پاس لکھا ہوا تھا وہ انگریزی میں تھا ہندی کی ٹائپنگ پہلے اتنی آسانی سے نہیں ہوتی تھی اب تو آسان ہو گیا ہے کام ہندی میں ہو جاتا تھا تو اسے لکھا اس کا ایک ریزن تو یہ تھا کہ بھائی ریڈی میڈ مال ہے اسے بنا دو دوسرا یہ تھا کہ میں نے سوچا دیکھیے ایسا ہے کہ آپ بھارت میں تو کافی کچھ نالج ہوتی ہے لوگوں کو لیکن ودیشوں میں اگر یہ پڑھی جائے گی تو اس کا کچھ ان پٹ ان کے پاس بھی جائے گا کیونکہ یہ ہماری بھارتی سنسکرتی کی بہت کچھ اس میں جھلک ہے
2: तो आपने लिखा है कि जैसे एक ओम करके आपने लिखा है इसमें इंस्पायर्ड बाय वैदिक विजडम तो आपने वेदों का भी यहाँ पे
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो सरल भाषा में अगर मैं ऐसे समझू सरल भाषा में आपने वेदों का भी जिक्र करके लोगों तक पहुंचाए एम आई राइट हियर और
4: यस बिल्कुल ठीक है इसमें जो भी ये बातें कही गई हैं वो सारे वेद संगत हैं मतलब ये है कि
2: इसमें
4: नहीं वो तो ये जस्ट अ कोटेशन इसके अंदर एक और कोटेशन इसके अंदर एक और कोटेशन है और जो मैक्स मुलर ने 1880 में लिखा था अपनी बुक के साथ अपने कमेंट के साथ तो वो भी है लेकिन इसमें ऐसा है कि यतेंद्र जी इसमें जो हर चैप्टर है चैप्टर इज कुड बी इंडिपेंडेंटली रेड आप जैसे ही काइंडनेस के बारे में बताया गया है आपकी ये क्षमा मांगने के लिए के बारे में बताया गया है इसमें आपके जो भी एक्शंस हैं उसके क्या रिपरकशंस होते हैं कहाँ तक जाता है जैसे कि एक बच्चा बेंच पर बैठा हुआ है वो रो रहा है 6-7 साल का है तो ये लेडी आती है पूछती है कि क्या हुआ बेटा वो बोलता है कि मम्मी कहाँ है मुझे मिल नहीं रही है मम्मी अलग हो गई है तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं तेरी मम्मी को ढूंढती हूँ तो ढूंढा बच्चा चला गया वहाँ से अब बच्चे पर इतना असर होता है उस बात का वो बड़ा होता है डॉक्टर बनता है तो वो बड़ी अच्छी तरह से अपने पेशेंट्स को देखता है उनसे अच्छी तरह से बात करता है और उनकी उनकी जो बातें हैं सुनता है तो हर बात का आदमी की पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ता है स्पेशली बच्चे को किस तरह से आप डील करते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है तो ये भी इसमें एक छोटी सी वो है कहानी है
5: आई थिंक ओवरऑल जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा था बहुत अच्छे से लिखा गया है इट्स लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और तो कि इंग्लिश में लिखा गया जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती तो आई थिंक जो यंगर जनरेशन जो हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं या जो हमारे कल्चर में से आ सकते हैं बट वो हिंदी पढ़ नहीं सकते तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा है लाइक ये लाइक अ यंग ऑडियंस कैन ऑल्सो रीड दिस
2: एक प्रश्न पूछता हूँ मैं कई चीज़ें आपसे अपनी आज जिक्र कर रहा हूँ मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ ये हाथ काम कर रहे हैं शरीर काम कर रहा मैं नहीं कर रहा हूँ मैं उससे अलग हो जाता हूँ मैं जैसे किसी की हेल्प करी और उसका जो भी होना आया हुआ नहीं हुआ ना हुआ वो मुझे धन्यवाद के लिए मैं कहता हूँ भाई लिसन ये मेरे जीवन में आपका इतना हिस्सा था आप लेके गए आई एम नथिंग टू डू विद दैट मेरे जो मेरे जुबान से भी कुछ चीज़ अभी निकल रही है वो मेरा नहीं है काम खत्म करो
1: तो आप ऑब्जर्वर बन गए ऑब्जर्वर बन के कीजिए डूअर बन के
2: मैं नहीं कर रहा हूँ बस मैंने खत्म कर अगर इस भाव से मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई कर्म ही नहीं है मैं क्यों उसमें फंस
4: बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई हमारे एक प्रवीण गोयल जी हैं वो यहाँ पर आए थे उनका इंटरव्यू कई साल दो साल तो हो गए उनके उनसे बात हो रही थी तो वो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि कोई आपके सामने जा रहा है उसका हैंकी नीचे गिर गया आपने कहा अरे आपका ये गिर गया है आप ये ले लीजिए तो उसने अपने लिया अपने पॉकेट में रख लिया आगे चल दिया तो आपको लगा कि यार इस आदमी ने थैंक यू ही नहीं बोला अगर आपको ये लगा कि आपने उसने थैंक यू नहीं बोला तो एक कर्म हो गया आपका
2: एग्जैक्टली बिल्कुल
4: लेकिन अगर आपने कोई बात नहीं आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में तो जैसा कि आप कह रहे थे ये अकर्म हो गया इससे आपका कोई बंधन नहीं है
2: एक्चुअली इन हाथों से काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ है मैं अब मालूम क्या करता हूँ उनको बोलता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर डिलीट कर दो और वो जो दिवाली हो उसके जो आते मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करके आते हैं ना वो मैंने कहा वो भी नहीं और कहीं मिलूँ मुझे पहचानना भी नहीं और मैं एक्चुअली मैं खुद भी मैं जैसे कोई मिला तो मैं देखता हूँ तो ऐसे करके देखूंगा क्रॉस करके निकल जाता
4: हूँ तो ठीक
2: नहीं मैं क्यों उसको उस चीज़ की याद दिलाऊँ वो उस समय था वो डिफिकल्ट वाला समय होता है जीवन में मैं क्यों उसको याद दिलाऊँ
4: नहीं तब भी अपना मतलब ये है कि आप प्रेम भाव रखिए याद करने
2: अगर वो रखना चाहता है वो अलग की बात हो जाती है लेकिन मैं क्यों उसको उसमें लेके जाऊं ना मुझे देख के उसको वो दिन याद आएंगे एनी हाउ मैं कहां अपना उसमें पर अच्छा ये बताइए तो अभी ये किताब कोई कैसे खरीद सकता है कहां पे कैसे क्या चल रहा है
4: देखिए Amazon के स्टोर पर चले जाइए या वेबसाइट पर जाइए वहां बुक सेक्शन में जाकर drawn back टाइप करिए
2: तो d r a w n drawn back तो जो इसका किताब का नाम भी है वो इंग्लिश में तो वहां drawn d r a w n back b a c k ये नाम है और उसमें आप लेखक के नाम से भी डाल सकते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा और अब किताब आपको मिल जाएगी और डिलीवर हो जाएगी
4: आपने एक सवाल नहीं पूछा है सर
2: जी जी जी
4: ड्रॉन बैक तो आपने पढ़ लिया लेकिन आपने पूछा ये नाम क्यों रखा
2: अभी अभी अब उस पे आते हैं लेकिन एक सेकंड तो जो लोग खरीदना चाहते हैं आप बहुत अच्छी बुक है और मेरे हाथ में ये बुक है बहुत खूब बहुत देखने में भी अच्छी है मैं ये कहने की कोशिश करता हूं जो पेज है प्रदीप जी आप बता रहे थे कि आपने ही इसको डिजाइन करा तो सारा कुछ आपने
4: मैंने डिजाइन किया एक्चुअली ये चैट जीपीटी के 3 टू हेल्प इसका जो कवर है कवर मैंने चैट जीपीटी से डिजाइन किया
2: मैंने कुछ नहीं कहा पूनम जी
4: नहीं नहीं ये तो
1: नहीं नहीं ये तो अच्छे ढंग से चैट जीपीटी का
2: इस्तेमाल किया अच्छा चलिए अब आप बताइए मुझे कि ड्रॉन बैक एक कैसे नाम आपने डाला क्या
4: मैंने कई नाम सोचे थे
2: जी
4: जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स क्योंकि पैरेलल है वहां कोई और जनरली आप एक से दूसरे में नहीं जा सकते हैं फिर मैंने सोचा फिर किसी ने कहा कि यार पैरेलल यूनिवर्स से ये लगता है कि ये जैसे कि साइंटिफिक फिक्शन है
2: ओके
4: अच्छा तो फिर ये लगा कि ड्रॉन बैक दिमाग में आया क्योंकि इट इज involuntary aap apni marzi se janam nahi lete hain aapka janam hota hai kyunki aapke karmic debts hain karmic bandhan hai aapke isliye aapka punarjanam
2: na apni marzi se janam hota hai na apni marzi se mrityu hoti hai isliye
4: aapko
1: ye to bahut achhi baat hai jo malik ne ye cheez apne haath mein rakh li warna ai ke aane ke baad koi zinda na bachta
4: acha ha बोलिए
2: तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए
4: बिल्कुल
2: ठीक है ना और उसके बाद में हमारे नए मेहमान भी मेहमान नंबर 2 जिसको कह सकते हैं वो भी आ गए हैं उनसे अभी हम आपका परिचय कराते हैं
6: दिस इज व्हाट योर बाइसिकल साउंड्स लाइक टू ड्राइवर्स एज यू अप्रोच एन इंटरसेक्शन यू आर टोटली साइलेंट ड्राइवर्स कांट हियर यू सो मेक श्योर दे कैन सी यू Wear a brightly colored helmet and clothing when riding. We're all just people on the move. So let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
7: 2 Triple O's station sponsor.

0: believer of that faith, what benefit it's going to give it to me?
1: आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि मान लो कोशर है या हलाल है, मान लो आटे पे लिखा है, आटे को कुछ मीट तो होता नहीं उसमें कुछ।
0: हाँ जी, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं होता।
1: मेरे भी हिसाब से नहीं होता। तो अब उसमें अगर किसी ने हलाल लिखा है तो what it means
0: practically, religiously I don't know why it means, because I'm not from that faith or not not from the Jews or other community, but mere ko jo economically lag raha hai, dikh raha hai, aur jo numbers hain as of today based on the, I think it's $3.5 trillion economy worldwide. Halal.
1: Oh my god,
2: wow.
0: It's not billion,
1: it's a lot of money.
0: It's 3.5, so it's a, I think it's more of a monetary incentive also. But look again, ये उनका रिलीजन है या किसी का भी रिलीजन हो, जैसे मेरा कल रिलीजन है, मैं कोई सात्विक सर्टिफाइड फूड खाना चाहूँ तो मेरी मर्जी है, राइट? बट एट द सेम टाइम मेरे पास चॉइस तो होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना. आज क्या है कि आज हम किसी भी प्रोडक्ट्स, वुलवर्स चले जाएँ, कोल्स चले जाएँ, किसी में भी चले जाएँ, आई थिंक अराउंड 30-40% प्रोडक्ट्स पर तो स्टैम्प लगी है.
2: Yeah.
0: लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पर स्टैम्प भी नहीं लगी.
1: Yeah.
0: मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यू विल बी सरप्राइज.
1: अगर स्टैम्प नहीं लगी तो क्यों पैसा देगा?
0: वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं बट दे डोंट पब्लिकली एडमिट.
1: ओके ओके, पैसा फिर भी जा रहा है.
2: आल्सो आई थिंक कि जब वो स्टैंप लगा देते हो ना, हलाल या कोशर का या व्हाटएवर फेथ रिलीजियस स्टैंप यू पुट ऑन, उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी भर जाती है. Because you will find
3: तो वही तो हमें कम होनी चाहिए हमारे
2: लिए. exactly.
1: इतनी महंगाई हो रही
0: है सर, मेरे हिसाब से वो कुछ वैल्यू एड करे या वो मेरे पूजा के रिलीजियस पूजा के उससे अलाइंड हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि एटलीस्ट मैं उसको, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आज झूठे हाथ से ग्लास ही पकड़ता हूँ तो मैं वो ग्लास मैं मंदिर में नहीं ले जा सकता.
1: सही बात.
0: मैं पूजा के लिए वो ग्लास को यूज नहीं कर सकता जब तक मैं ग्लास को दोबारा धो ना लूँ, साफ पानी ना डालूँ और तब भगवान को अर्पण करूँ. मैं जब वो नहीं कर सकता तो मैं कोई भी दूसरे रिलीजियस का ऑफर्ड फूड अपने भगवान को कैसे दे सकता हूँ? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है. लेट्स से कि वो रिलीजियस ऑफर्ड होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कि ये प्रोडक्ट जो सर्टिफाइड है इसमें कोई रिलीजियस प्रेयर्स नहीं करी है, इसमें करी है? वी डोंट नो. व्हाट आई वांट इज फ्रीडम टू चॉइस एंड ऑल्सो जस्ट टू अवेयर स्प्रेड अवेयरनेस इन अवर कम्युनिटी कि भाई आप जो मर्जी अपनी डेली लाइफ में खाओ ये आपकी मर्जी है. कम से कम हमारे फेस्टिवल्स में और हमारे मंदिरों में वो सेंटिटी मेंटेन करो. मैं मंदिरों के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फॉर एग्जांपल देखिए अभी तिरुपति बालाजी का केस हुआ था, सबको पता है कि वहाँ पे जो प्रसाद था उसमें एनिमल फैट मिला था जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है हमारी वैल्यूज के. हाउ मच एंगर एंड यू नो डिस क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट वी हिंदूज हैड एट दैट टाइम, राइट? वी जस्ट वॉन्टेड.
1: क्या उन लोगों को क्रूसीफाई करा गया था? उन लोगों को मार दिया गया कि नहीं मार दिया?
0: ऐसा नहीं होता, आपको पता है.
1: क्रूसीफिकेशन को बलि चढ़ाई जाती है ना?
0: नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं चढ़ाई जाती. कैसी बातें कर रहे
3: हैं? अच्छा ये बताइए कि आप इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं?
0: देखिए हमने पहले 2-3 साल अपनी कम्युनिटीज के अलग अलग ग्रुप्स में जाके अवेयरनेस फैलाई. आज अब हम पहला फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं 18th of October को.
1: अच्छा, तीसरा इवेंट हो रहा है.
0: अच्छा, तो 18th of October को फर्स्ट इवेंट होगा, 18th of October इवनिंग को, और इसकी टिकट्स इवेंट ब्राइट पे हैं. मैं स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के, चाहे वो कहीं से भी हों, चाहे वो फिजी इंडियंस हों, चाहे वो नेपालीज हों, कहीं से अफ्रीका बेस्ड हिंदू जो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर रजिस्टर करें. जो बिजनेसमैन हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, जुड़ें, एक्सचेंज द आइडियाज़. वी गोना हैव अ ग्रेट पैनल ऑफ यू नो इंडिविजुअल्स हु गोना हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस मैटर. दे गोना पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि वेदर इट इज़ अ राइट डिमांड टू पुट दैट थिंग इन अवर कम्युनिटी और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इफ इट इज़ अ राइट डिमांड, हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस एटलीस्ट टू मेंटेन द सेंटिटी ऑफ अवर रिलीजियस प्लेस.
1: तो मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. श्रोताओं, आपने कभी नोटिस करा है कि जैसे एक आटा का आप बोरी वो खरीद रहे हो, क्या उसमें आपने पढ़ने की कोशिश करी कि उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा है, या केवल आप आटा देखा, ब्रांड का नाम देखा, एक्सपायरी डेट देखी और बात ख़त्म हो गई? آپ اپنے وچار ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا انبھو ہے اور

0: क्या आप जो सुमित जी मुहिम चला रहे हैं जो पूरा मूवमेंट चला रहे हैं क्या उनके साथ में आप जुड़ना चाहेंगे क्या आप सोचते हो कि ये वर्थ कॉज है या ये वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे साथ में अपने विचार शेयर करिए इफ यू वांट टू कॉल मी आल्सो माय नंबर इज 0421-590-791 और हमारे साथ में जो सुमित जी हैं सुमित जी आपने जैसे बोला कि आपको चार पांच साल हो गए जुड़े हुए इससे आपका अनुभव क्या रहा अब तक इतने प्रयास आपने क्या क्या प्रयास करा और आगे का आपका क्या प्लान है
1: देखिए जो अभी तक हमारा रहा है यही कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है
0: जी
1: स्पेशली तो हमारा फर्स्ट एफर्ट यही है कि लोगों को बताएं उनके फीड लोगों का फीडबैक लें ये चाहे जानना चाहते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं फिर हमने कम्युनिटी लीडर्स और मंदिरों से कॉन्टेक्ट किया कि क्या हमारे सनातन धर्म के हिसाब से मंदिरों में ऐसा फूड भगवान को अर्पित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता ज़्यादातर ऑलमोस्ट यूनानिमसली सब ने मना करा कि जो चीज़ ऑलरेडी किसी को अर्पण हो चुकी है वो हम अपने देव को अपने ईष्ट को अर्पण नहीं कर सकते तो ये चीज़ हमने पहले दो तीन साल इस पर काम किया अब हम कुछ लोगों से साथ मिलकर कुछ वॉलंटियर्स हैं हम सारे वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी मनी और एनी इंसेंटिव्स हियर सो अब हम कुछ लोग मिलकर के फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं टू गेट द कम्युनिटी लीडर्स टुगेदर टू गेट देयर फीडबैक एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग इन्फ्लुएंशियल पीपल सो दैट दे वर्ड और आगे जाए और इसके बारे में हम कुछ कर सकें ताकि हमारी कम्युनिटी को पता हो कि वो क्या खा रहे हैं क्यों उन्हें क्या खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए उनकी चॉइस है बट हम उनको नॉलेज तो दें और वही चीज़ क्या वो चीज़ हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान को अर्पित की जा सकती नहीं की जा सकती
0: आप वैसे तो काफ़ी लोग कॉन्शियस हो चुके हैं मैंने ये देखा है कि लोग पढ़ते हैं क्योंकि खाने में आज के डेट पे आप मैं आई एम नॉट एक्चुअली पैरानॉइड लेकिन इवन जो रॉ फूड आ रहा है क्या वो वाकई में टमाटर है अब यहाँ तक प्रश्न हो रहे हैं
1: ये तो मैंने भी पहली बार सुना है
0: नहीं नहीं क्या हो रहा है कि जो हमारे अमेरिकन हैं वो कुछ भी करते हैं जो हमारे सीड आते हैं वो इस तरीके की सीड बनाए अब आपने देखा होगा कि जैसे एप्पल है खराब ही होता है बनाना आप खा रहे हो वो चले जा रहा है तो उनके बीज को उनको सब मॉडिफाई कर दिया है एंड सब हो रहा है अभी जो यंग लोग हैं जैसे ऑर्गेनिक का काफ़ी खाने का आपने सुना होगा मैं काफ़ी ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करता हूँ जो भी मिल जाता है इट डज हेल्प अ लॉट आप जैसे दूध होता है आप जो नॉर्मल वाला टिपिकल मिल्क होता है और जो समझो A2 वाला आप मिल्क लेते हो और ऑर्गेनिक मिल्क लेते हो जमीन आसमान का फर्क है मैं ऑर्गेनिक पीता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ
2: क्या टेस्ट बेहतर होता है क्या
0: नहीं उसमें क्या होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिक में तो जो गाय को जो खिलाते हो ना आप उन 100-100 किलो एक दिन में दूध देते हैं मालूम है आपको तो वो कैसे आता वो तो
1: पर जितेंद्र जी ऑर्गेनिक फूड भी आज की डेट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता देयर लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली
0: मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आज की डेट पर कॉन्शियस हैं क्योंकि हाँ। आप अगर अपने शरीर को खाना भी प्योर नहीं दे सकते हो तो क्यों
1: बिल्कुल सही बात
2: है जी आपको क्या फायदा है
0: हाँ मैं बताता हूँ आपको ये मैंने शुरुआत करा था करीब उसको 20 साल हो गए होंगे और उस समय तो 3 गुना महंगा होता था तो जैसे रात को हमारे यूपी वाले रात को दूध पीते हैं सोते हैं तो सवेरे ना सलाइवा बहुत गंदा होता था बहुत और धीरे धीरे ना वो बहुत परेशान करने लगा तो उसमें ये ऑर्गेनिक मिल्क का आना शुरू हुआ तो पहले ही दिन इट वॉज सो गुड नो जो है ना वो एक खराब सब खत्म हो गया और फिर बॉडी में भी आपको मालूम पड़ने लगता है कि ये तो सिम्टम ऐसा था जो आई कुड नोटिस इमीडिएटली लेकिन आपका बाद में भी मालूम पड़ता है आप पाएंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक आई एम नॉट ए शेयर होल्डर इन एनी ऑर्गेनिक कंपनी डिस्क्लोज लेकिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ रहा है
3: سمیت جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا ایک ہی سولیوشن ہے کہ آلٹرنیٹیو اویلیبل ہونا چاہیے آلٹرنیٹیو اویلیبل ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے
0: نہیں نہیں آرگینک کا
3: نہیں آرگینک کی بات نہیں کر رہا ہوں حلال کی بات کر رہا ہوں
1: دیکھیے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ فریڈم آف چوائس ہونا چاہیے
3: ہاں بالکل
1: ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ میں اگزامپل دیتا ہوں میں پہلے جب ہم نے اس کی ایک لسٹ بنائی تھی 2020 میں 2020 میں ہم نے ایک لسٹ بنائی ہم انڈین گروسری اسٹورس پہ گئے کیونکہ ہمارا فوکس صرف انڈین فوڈ پہ تھا پہلے کہ انڈین گروسری اسٹور پہ گئے اور دیکھنے گئے کہ کتنے پروڈکٹس پہ حلال سرٹیفائڈ ہے سو می اینڈ ٹو ادر والنٹیئر اسپینڈ اراؤنڈ 5 ویکینڈس ون آفٹر اندر صبح جاتے تھے دوپہر تک وہیں رہتے تھے
0: سمجھ جی ایک کام کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر آپ کی یہ والی بات پہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا
4: بھائی صاحب یہ کری ماسٹرز اور انیہ مسالوں میں کیا انتر ہے
5: بہن جی کری ماسٹرز کمپلیٹ کری مکس ہے اس میں آنین گارلک جنجر ٹماٹر نمک مرچ ہلدی دھنیا وہ سبھی مسالے ملے ہوئے آتے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں لاجواب ہے اٹس سو ایزی ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.currymasters.com.au
6: This is what an approaching bicycle rider sounds like when you're driving. Absolutely silent. You can't hear them, so remember to keep an eye out for them and check your mirrors and blind spots regularly. And when passing at 60Ks or under, allow a 1 meter gap between you. We're all just people on the move. So let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
7: 2OO's station sponsor.
8: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
9: آپ ہماری سماجک سوچنائیں اور سپانسرز کے سندیش ہماری ویب سائٹ dapanradio.org.au پر دیکھ سکتے ہیں

0: contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Durban Hindi Kai ke me sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413
2: 385 976. Pradeep ji, thode aur sawal baki hain, aapne kafi kuch ke jo sab jawab de diye hain. Ye reincarnation. आप इसमें बिलीव करते हैं?
3: हाँ बिल्कुल करता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये बिलीव वाली बात तो ये है कि अगर आप बिलीव करते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता। आपने अगर सदगुरु को सुना है तो अक्सर ये कहते हैं कि इफ यू से आई बिलीव इसका मतलब आपको पता नहीं है, तो ये पता तो नहीं है। लेकिन ऐसा है कि सरकमस्टांशियल एविडेंस मेरे ख्याल से हमारी लॉयर बता सकती है कि वो ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि ने इतनी तपस्या की, हमारे रग रग में इस तरह की फीलिंग है कि हाँ होता ही है। तो उस विचार से कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है।
2: बात सुनिए, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है, आई थिंक इटावा में कहीं पे, वो गाँव में, पढ़ी लिखी नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं बाहर का, ठीक है। सी गॉट मैरिड, एक बच्चा होता है, उसका हस्बैंड कहीं चला जाता है तो वो सी वाज बिट ऑफ अलोन, कहीं बाहर काम करने के लिए जैसे जाते हैं। सडनली एक दिन ना उसकी डेथ जैसी हो जाती है। और बाय द वे ये इंटरनेशनल वो है एक केस जहाँ पे काफ़ी दुनिया के लोग भी आए, तो वो उसको लाके उलटा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और थोड़ी देर में एकदम उसके अंदर एक जान आ जाती है। शी स्टार्ट टॉकिंग इन बंगला इंग्लिश।
3: अच्छा,
2: वो राइटिंग भी करने, उसने कभी लिखा नहीं।
3: ऐसा है यतीन जी, इस तरह के हजारों केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं।
2: वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर जो उससे बात की, नहीं मैं, उसने जिस लेडी का उसके अंदर वो आ गया, तो वो उसने बताया कि
4: खबरें आए दिन आती रहती हैं किसी बच्चे को अपना पूरा पिछला जन्म याद आ गया।
2: हाँ।
4: वो क्यों, फिर किसी लेडी को याद आया तो वो उस गांव गई,
2: वहाँ
4: वो लोग मौजूद थे जहाँ से उस...
2: लेकिन मैं पूछा था प्रदीप जी से इस किताब के बारे में।
3: हाँ।
2: कि आपने, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है आपकी इस किताब की, उसमें इसका काफी बड़ा रोल है रीइंकार्नेशन का, और जिसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू रिमेम्बर पास्ट लाइफ बेसिकली।
3: हाँ हाँ हाँ।
2: तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
3: अक्सर प्रश्न लोगों का ये होता है कि हम पास्ट लाइफ रिमेम्बर क्यों नहीं करते हैं।
2: हाँ।
3: देखिए, एक तो ये है, ये मेरे विचार से ये सेफ्टी स्विच है। अगर आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ जाए तो आप पगला जाएंगे।
2: मैं तो उसको ये कहता हूँ कि इवन जो करंट लाइफ में जितना भूलो उतना अच्छा।
3: अच्छा, लेकिन आपके जो संस्कार होते हैं, जैसे ही आप जो काम कर रहे हैं तिंदर जी, ये संस्कार आपके दिमाग में रहते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आप जब पुनर्जन्म होता है तो वहीं से शुरू करते हैं आप। ये जो टेंडेंसीज बन जाती है ना हमारी, कि अच्छा दान देना है, ये करना है, वो करना है, ये एकदम ये आपके सूक्ष्म शरीर में के साथ जाती हैं।
2: व्हाट अबाउट जेनेटिक, कि आपके माँ बाप से नहीं आते हैं?
3: माँ बाप से अगर आती होती तो जुड़वा बच्चे एक से होते, जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं होते हैं, सब उनका करेक्टर अलग अलग होता है।
2: एक और बात कही जाती है कि जो बेटा होता है बाप के कर्मों का प्राश्चित होता है।
3: अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होता है, लेकिन ये तो बड़ी जटिल
2: अपने कर्म है,
3: अपनी जटिल समस्या है ये, तो इस पर भी रोक शोध किया जा सकता है, लेकिन मुझे
2: बुक नंबर टू
3: मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा है।
4: जो रिश्ते भी बनते हैं वो कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं।
3: हाँ।
4: तो आपका किसी के साथ कितना जुड़ाव है,
2: ये भी बात सही है,
4: और कितना जुड़ाव है आपका किसी के साथ, और आपका कैसा रिश्ता रहा, वो बच्चा जिसको जो आपके घर में पैदा हुआ, आपने उसके साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा किया, तो वो उसका, अब आप सिंपल वर्ड में कहेंगे बदला लेने के लिए, अब वो, क्योंकि अगर आप खत्म नहीं करते हैं वो, जैसा कि आपने कहा कि मैंने सुबह उठ के प्रदीप जी से।
2: अच्छा प्रदीप जी, एक काम करते हैं, समय समाप्त होने को आया, हाउ टू कंक्लूड योर अवर डिस्कशन रिगार्डिंग योर बुक? ऐसा क्या आखिर में हमारे
3: मुझे मेरी जो ये बुक है वो इस तरह की है कि ये बुक क्लब टाइप की जगह बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं जैसे आपने अभी कहा तो आप गोष्ठी कीजिए कि रीइनकार्नेशन पर क्या है कहाँ लिटरेचर अवेलेबल है या पास्ट लाइफ क्यों नहीं याद रहती ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं
2: आप दोबारा से हमें अच्छा बता दीजिए कि किताब अमेजोन पर मिलेगी और इस किताब का नाम है श्रोताओं ड्रॉन बैक DRAWN बैक और ऑथर का नाम है आपको प्रदीप PRADEEP कुमार सिन्हा
3: इसका मैं शेयर कर दूंगा अभी इस पर अपने व्हाट्सएप
2: वो जो भी प्राइस है अमूल किताब है ये अच्छा सुमित जी आप अपने फोन में व्यस्त हैं आप कंक्लूड करिए क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया
5: हम कहां किस टॉपिक पे सॉरी
2: आप ये बता दीजिए कि अब आपका प्रोग्राम कब है कहां पे है
5: हां जी
2: और आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारे श्रोता आपको कैसे मदद कर सकते हैं
5: देखिए पहले तो हमारी एक वेबसाइट है sattvikcouncil.com हम अगर कोई श्रोता हमें सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं देयर इज अ बैंक अकाउंट डिटेल्स यू कैन सिंपली डोनेट द मनी देयर वी नीड मनी टू फॉर द इवेंट्स सेकेंडली हमारा फर्स्ट इवेंट है 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को
2: हम कहाँ पे
5: डोन मोर कम्युनिटी सेंटर